0: यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: महात्मा गांधी का कहना है,
2: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है लाइव रेडियो लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस न्यूज पॉडकास्ट्स साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
3: कहाँ
6: एडमिशन कराने हैं? खाता हुआ एक्टिव,
1: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ।

0: रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है. सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें. ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात.
3: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती. आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है. आज कारगिल विजय दिवस है. ये दिन हमें गर्व से भर देता है. ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है. कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था. उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया. आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं. साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है. इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है. 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी. इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट. यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता. साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है. कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया. यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है. इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है. यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है. इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया. इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है. 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है. इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है. दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है. आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें. मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी. मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं. कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है. जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए. इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है. मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है. कहीं पुराने तालाबों से घास निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है,

बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम

किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छंटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। दो कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं।

वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में वर्षों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी।
नाम उनका

रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स

बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: मन की बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ആകാശവാണിയിലൂടെ നടത്തിയ പ്രതിമാസ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. ആകാശവാണി

हाय दोस्तों, लम्हे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन। पर्यावरण के गुण और विशेषता, ये तो सामान्यकृत या स्थानीय, क्योंकि वे मनुष्य और अन्य जीवों पर प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण की गुणवत्ता एक सामान्य शब्द है जो इसका उल्लेख कर सकता है। हवा और पानी की शुद्धता या प्रदूषण, शोर, खुली जगह तक पहुंच और इमारतों के दृश्य प्रभाव जैसी विभिन्न विशेषताएं और संभावित प्रभाव जो ऐसी विशेषताओं का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। पर्यावरण की स्थिति मानव स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन के अन्य पहलुओं का प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए प्रदूषण के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, उदाहरण के लिए संपत्ति की कीमतों पर प्रभाव पड़ने से, जो बदले में किसी व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि को प्रभावित कर सकती है। पर्यावरणीय गुणवत्ता को एक सार्वजनिक वस्तु माना जाता है जिसका सभी को समान मात्रा में सेवन करना चाहिए। यह दृष्टिकोण इस आधार से शुरू होता है कि निजी संपत्ति के अधिकारों को पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए परिभाषित नहीं किया जा सकता है, या यदि तकनीकी रूप से व्यवहार्य और या निजी संपत्ति के अधिकारों को परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। कई संशोधित पर्यावरणीय कारक जैसे कि बाहरी वायु प्रदूषण, घरेलू वायु प्रदूषण, पीने के पानी का संदूषण, खतरनाक सामग्रियों के व्यावसायिक जोखिम, सीसा जोखिम और निर्मित वातावरण जो शारीरिक गतिविधि को हतोत्साहित करते हैं, पुरानी बीमारी के जोखिम और अनुभव को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रदूषित पर्यावरण न सिर्फ गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है बल्कि जान भी ले रहा है। साथ ही जाने कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए लोग क्या कर सकते हैं। कुछ वक्त पहले आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि घर के अंदर और बाहर होने वाले वायु प्रदूषण के कारण हर साल करीब 70 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है, जिसमें 6 लाख बच्चे शामिल है। इस जानकारी के आधार पर ही हम लोग

अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए एक जहर बनता जा रहा है। आज हवा से लेकर पानी, फल, सब्जियां, यहाँ तक कि रोजमर्रा की सभी चीजें प्रदूषित हो गई है और कई तरह की बीमारियों का घर बन गया है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से न सिर्फ सांस संबंधी बीमारी होती है बल्कि ये मृत्यु को भी बुलावा देती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। जब वायु में प्रदूषित तत्वों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है तो सांस लेने में परेशानी के अलावा आंखों में जलन और खुजली होने लगती है। आस्थमा के अलावा सांस संबंधी कई बीमारियां पैदा हो जाती है। आज लोग टेंशन, डिप्रेशन, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के चपेट में आ गए हैं, जिसका जन्मदाता वायु प्रदूषण है। हाल ही में आई एक स्टडी के अनुसार यातायात संबंधी प्रदूषण की वजह से बच्चों के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यह कई तरह के मानसिक विकारों को जन्म देता है। वायु के प्रदूषित होने के कई कारण हैं, जिनमें मुख्य है फैक्ट्री और कारखानों से निकलने वाला हवा, SPM यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सीसा और नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि। पर्यावरण को प्रदूषित करने में कूड़ा कचरा भी अहम भूमिका निभाती है। जगह जगह कूड़ा जलाया जाना और फेंकने से कई हानिकारक गैस उत्पन्न होते हैं और स्वच्छ हवा के साथ मिलकर उसे जहरीला बना देता है। जिस तरह स्वस्थ जीवन जीने के लिए साफ हवा की जरूरत होती है, उसी तरह साफ पानी की भी जरूरत होती है। कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन आज यही जल कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है। इसकी वजह है पानी का प्रदूषित होना। फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला कचरा नदियों में बहा दिया जाता है। गंदे नालों से निकलने वाला पानी नदियों में मिलकर उसे प्रदूषित बना देता है। यही प्रदूषित पानी डायरिया, टाइफाइड और अन्य बीमारियों का कारण बनता है। पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार तो कुछ नियम ऑलरेडी

पानी वेस्ट रहता है उसे अपने पौधों में डालें, किचन वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करें, थोड़ा ही सही घर पर कुछ ना कुछ जरूर उगाएं, हो सका तो कुछ ज्यादा भी उगा सकते हैं, आपके पास अगर जगह और टाइम हो तो वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो आसानी से उगे उसे भी लगाएं, और इससे आप बार बार आपको दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हरा धनिया उगा सकते हैं, मेथी उगा सकते हैं और पालक भी घर पर ही उगा सकते हैं, टमाटर, बैंगन, टिंडा, ये सब आप घर पर आसानी से उगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ टिप्स एनवायरमेंटल क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले लम्हे प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत, नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: रेमेडी है, लीगल रेमेडीज की जरूरत उनसे सबसे ज्यादा है। हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इश्यूज के लिए जर्नलिस्ट है, मीडिया है, इस पर बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना सारे नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हमारे देश पे हैं, वेटलैंड से लेके, जंगल से लेके, कोस्टल एरिया से लेके, सारे कुछ चीज़ों पे एक रेमिडीज मिलने का ऑप्शन, एक एवेन्यू हमारे देश पे लीगल पॉलिसी के द्वारा खुला गया है। पर जो सबसे इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है वो लीगल पॉलिसीज को कैसे कम्युनिटी क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते। हर प्रॉब्लम के लिए उनके उनका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट पे जा पाए, वह उनका ये आधार ना हो, पर जिन जिन के लिए किस किस इशूज़ पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके चलते मैं तीन चीज़ों का बात करूँगा। एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, उसके साथ हम एक सीयर्स एक नोटिफिकेशन का भी एक बात करेंगे। ईस्टर्न इंडिया पे, बंगाल के सुंदरबन के एरिया पे सीयर्स एक केस कैसे एनजीटी का कोई जजमेंट कुछ परिवर्तन ग्राउंड पे ला सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड तीसरा हम ये भी बात करेंगे कि ये कम्युनिटी कैसे ये एयर क्वालिटी जैसा बड़े इश्यूज पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ भी है। तो पहले हम शुरू करते हैं ईआई नोटिफिकेशन के बारे में। ईआई नोटिफिकेशन पे जो है इट्स बेस्ड ऑन अ इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल एंड एज वेल एज वाइडली डिस्कस्ड इन आवर कोर्ट, जो हमारा कोर्ट पे भी डिस्कस किया गया है, दैट इज अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। So we there is a proverb called precaution is like, you know, it's better than cure. Prevention is better than cure. So that's the idea that we should take some precaution before we are coming up with some activity which is impacting the environment. For example, if we are coming up with an industry which is taking such and such groundwater, such and such cutting such that amount of forest, what will be the impact of that project on the local people, local environment, that needs to be assessed before the project is constructed. This is the provision which is this precautionary principle is the provision which creates our law, that is the environmental impact notification. It's a notification under Environmental Protection Act. So in that there is a provision of public consultation.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: the Telelock app, website www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है.
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: Now, as a group of a community, how they can participate in that area? So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different states. For different projects, there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is our law gives that and give the provision that this consultation, when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो local news media हो उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो national media हो सारे उसका जो local language है उस पर वो project के बारे में बात करके ये एक announcement होना है. एंड उसके बेसिस पे एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा ग्रास रूट का जो कम्युनिटी जो इम्पैक्टेड कम्युनिटी है प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली है उनके प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा एक अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारे एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीका से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और इसका क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज़ लीगली किया गया. उसके बाद ये चीज़ जो ये जो प्रोविजन है ये हमें बहुत एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत एम्पावर करते हैं उनके उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए उनका जो इश्यूज है उन पर बात करने के लिए उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज़्यादा एक स्कोप हमें देता है. एक केस एक दिन हमारे उधर आए हैं जिसपे एक जो फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है वो लोग आके बोले कि उनका मैंग्रोव एक जंगल का मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ

0: हुई है कंस्ट्रक्शन, बहुत बड़े एक होटल बन रहे हैं, तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है, उनको उतना रेमेडीज नहीं मिले, तो उनको कोर्ट के पास जाना है। तो हम लोग उनको, मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर के उस वहाँ पे जाके देखा कि एक बहुत कंस्ट्रक्शन 23 एकड़ ऑफ एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे मैंग्रोव काटा जा रहा है, एंड वहाँ पे जो स्कोप है उस पे वहाँ पे एक बड़ा बड़ा होटल बन रहा है। तो हम लोग उसका लोकेशन लिए हैं, उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है, उससे हम लोग देखे कि उसका क्या परिवर्तन, पहले क्या वहाँ पे मैंग्रोव हुआ करता था। उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है, जो मैप को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा कि वो मैप पे वो एरिया मैनग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है, एंड CRZ नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैनग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते हो, वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हो। तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीज़ों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लीगल एक लिटिगेशन बनाए, उस पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये दिया है कि ये होटल जो है ये मतलब ये CRZ का वायोलेशन है, इसको डेमोलिश करके वहाँ पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए। एंड ये जो प्रोटेक्शन है, ये दीज आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स बाई कोर्ट, जिसपे बस एक 23 एकड़ का जंगल नहीं बच रहा है, यहाँ पे पूरा सुंदरबन का एरिया का जो एक आइडिया है, जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है, इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है, जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है। एनवायरमेंटल इज, वी रेड इन क्लास 8 बुक दैट एनवायरमेंटल इज एवरीथिंग अराउंड अस, इट इम्पैक्ट्स मोस्ट द पब्लिक एवरीवन, एंड व्हाट इज नीडेड इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल जस्टिस वी शुड टॉक अबाउट स्ट्रेंथनिंग द ग्राउंड वेयर द पब्लिक इज एक्चुअली स्टेइंग। सर्टेनली रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड इन द टॉप डाउन टॉप टायर, बट द इम्प्लीमेंटेशन एंड द कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट दीज एनवायरमेंटल रेगुलेशंस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल, सो दैट द एवरी रीजनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिशियल्स आर केपेबल इनफ टू इम्प्लीमेंट द लॉ विच इज मेड इन द हाई हाउस इन दिल्ली। सो दैट्स हाउ वी कैन अचीव थ्रू एनवायरमेंटल जस्टिस व्हेन it's top down rather than it's what it's a bottoms up approach it should be there.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: So, initiatives government ने क्या लिए? 2018 में परिवेश पोर्टल Ministry of Environment ने introduce किया है NIC के साथ, जिसमें एक comprehensive legal window, single window दिया गया है for addressing the applications. कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी मॉनिटर होता है, इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस, सारे कुछ इसी पे मॉनिटर होते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006 की EIA नोटिफिकेशन में। कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहीं पर कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। पब्लिक हियरिंग पहले हुआ करता था, 1997 में अमेंडमेंट आया था जो कि रिटेन किया गया, लेकिन पब्लिक हियरिंग की जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन 2006 नोटिफिकेशन में आया। नेशनल एनसीएप जो एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज है, जहाँ पे पोल्यूशन का इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी सिटीज़ के लिए एनसीएप का प्रोविजन बनाया गया है। एंड फिर मिशन लाइफ है जो कि आप सारे ही जानते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मूवमेंट है। एंड कैंपा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है जो कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं उनसे जो ट्रीज कटिंग के लिए बाद में जो

फंड्स में रेज होते हैं वो मैनेज करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इस अथॉरिटी का काम है. अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि उन्होंने पॉलिसीज़ बना दी और क्लियरेंसेस दे दी. उसके बाद मेन काम उनका होता है कि एनवायरमेंट वो प्रॉपरली जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसका कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या नहीं है, इसका मॉनिटरिंग करना. उसके लिए रीजनल ऑफिसेस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं. सबसे पहले तो ग्रांट के बाद जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होते हैं एवरी सिक्स मंथ्स उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, कंप्लायंस रिपोर्ट. उस कंप्लायंस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिसर्स के हमारे ऑफिसर्स करते हैं. स्टेट लेवल पे सीआ करती है एंड सीपीसीबी भी एसपीसीबी भी करते हैं. अगर उसका मॉनिटरिंग होने के बाद कुछ वॉयलेशन पाया जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शो कॉज, गिविंग शो कॉज नोटिस, फिर उनका क्लोजर करना या फिर कॉम्पनसेशन लगाना या फिर रेस्टोरेशन के ऑर्डर्स देना. एंड इसके बाद अगर ये सारा होने के बाद ये प्रॉपरली सेटल नहीं हुआ तो वो फिर मामला एनजीटी में जा सकता है. अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर किया है. एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे नाम का एक केस हुआ था जिसके तहत सुमोटो कॉग्निजेंस लेने का, मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपने आप से किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं. इसके अलावा जो कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की वजह से, कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी में अंडर सेक्शन 60. सिटीजन्स जिनको डायरेक्ट एनजीटी में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे कि सीपीसी भी है, एसपीसी भी है, सीआ को या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भी लिख सकते हैं.

0: जयंत जी
1: जी,
0: इस हंसते मुस्कुराते गीत के बाद एक ऐसी कलाकार का नाम मैं लूंगी जिन्हें कभी हम ललिता, कभी हम छोटी बहू और कभी साहिब जान के नाम से याद करते हैं।
1: जी जी मनीषा जी, हमारे बहुत से श्रोता हैं जो पुरानी फिल्मों के कायल हैं, चाहने वाले हैं और तुरंत पहचान गए होंगे, इस इंगित को समझ गए होंगे कि आपका इशारा किस ओर है।
0: जी हाँ, मैं महान अदाकारा मीना कुमारी जी का जिक्र कर रही हूँ। जितनी उम्दा कलाकार थी, जितनी महान वो अभिनेत्री थी, उतनी ही कमाल की शायरा भी, बहुत अच्छा लिखती भी थी मीना कुमारी जी।
1: जी, मीना कुमारी जी का वास्तविक नाम था महजबीन बानू।
0: जी हाँ,
1: और आपका जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ था।
0: 1 अगस्त को दो कलाकारों का जन्म हुआ था, भगवान दादा और मीना कुमारी जी का भी जन्मदिन 1 अगस्त को ही था।
1: मीना कुमारी जी के पिता जनाब अली बख्श पारसी थिएटर के कलाकार थे।
0: जी हाँ,
1: और उनकी माँ भी एक कलाकार थी, नृत्यांगना थी, कामिनी के नाम से उन दिनों उन्हें जाना जाता था।
0: जी हाँ, और पहले मीना कुमारी जी बेबी मीना के नाम से फिल्मों में काम किया करती थी। शुरुआती दौर में जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने जो कुछ फिल्में की वो धार्मिक फिल्में थी, वीर घटोत्कच, श्री गणेश।

0: इश महिमा ऐसी फिल्मों में मीना कुमारी जी ने अभिनय किया
1: जी, और उन्हें फिर पहली फिल्म बतौर हीरोइन जो मिली मनीषा जी, वो थी विजय भट्ट साहब की फिल्म बैजू बावरा।
0: और बैजू बावरा की मीना कुमारी को कौन भूल सकता है
1: जी।
0: उस फिल्म ने उन्हें एक अलग ही पहचान दे दी। उसके बाद ढेरों फिल्मों की तो जैसे लाइन ही लग गई।
1: बिल्कुल, परिणीता, शारदा, दिल अपना और प्रीत पराई, साहिब बीवी और गुलाम, काजल, कौन भूल सकता है इन फिल्मों को और इन फिल्मों के उन किरदारों को।
0: और कौन भूल सकता है आरती, मैं चुप रहूंगी, फिर उसके बाद पाकीज़ा को।
1: जी, और एक खास बात मीना कुमारी जी के बारे में हम बताएं अपने श्रोताओं को मनीषा जी, के 1962 में फिल्म फेयर पुरस्कारों में जो नॉमिनेशंस थे
0: जी,
1: तो सर्वोत्तम अभिनेत्री का जो पुरस्कार था उसमें 3 नॉमिनेशंस केवल मीना कुमारी के थे।
0: क्या बात है,
1: आरती, मैं चुप रहूंगी और साहिब बीवी और गुलाम के लिए।
0: यानी कोई उनके सामने दूसरा कॉम्पिटिशन था ही नहीं,
1: था ही नहीं।
0: एक ही साथ उनका नाम नॉमिनेट हुआ
1: जी।
0: और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। श्रोताओ, मीना कुमारी जी के बारे में हम आपको जितना भी बताएंगे उतना कम होगा, क्योंकि उनके बारे में आपको भी बहुत पता है। उनकी कई फिल्मों से हम सब समृद्ध हुए हैं, उनकी बहुत सी फिल्में यादगार हैं, पाकीज़ा तो उनकी अमर फिल्म है। तो आज मीना कुमारी जी की रिकॉर्डिंग हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। जैन जी, वो एक ऐसी कलाकार हैं जिन्हें मुझे लगता है हर रोज भी याद करें तो कम होगा। कुछ ऐसे कलाकार हमारी इंडस्ट्री में हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: और हमारे पास एक खास रिकॉर्डिंग है जो हमारे श्रोता सुन चुके हैं, लेकिन मौजू होगा आज के दिन अगर उन्हें सुनवाएं, क्योंकि उनकी आवाज जयमाला जब उन्होंने प्रेजेंट की थी वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, हमारे श्रोता यदा कदा उसे सुनते भी हैं। आज उसकी रिकॉर्डिंग सुनवाने का जो लोभ है वो मैं संवरण नहीं कर पा रही।
1: नेकी और पूछ
0: तो
1: तुरंत इस रिकॉर्डिंग को अपने श्रोताओं की नजर करते हैं।
2: सुनहरी लिबास में अंगड़ाई लेकर झांकने वाली सुबह की नन्ही मुन्नी किरण भूले भटके राही को एक लम्हे में ही गम के गिरदाब से छुड़ाकर सुकून के साहिल पर पहुंचा देती है। फिर खुशियों के शगुफे, उमंगों की कलियां खिलखिलाकर राही के एहसास के हर गोशे को गुलपोश बना देते हैं। ये कायनात की फितरत है, या यूं समझिए कि एक प्यार करने वाले का गुनाह। चंदन का पलना फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में एक गीत सुनिए। इस गीत के बारे में एक बात और अर्ज कर दूं, मैंने इस गीत की बहुत मुखालफत की थी। वजह यह थी कि मुझे ये बहुत मामूली सा लगता था और मुझे हर वो चीज पसंद है जो गैर मामूली हो, लेकिन जब इसकी सिचुएशन पर इसको सोचा तो ये बहुत सजा। यूं भी चंदन का पलना एक गैर मामूली औरत की कहानी है जो शायद पहली बार फिल्माई गई है।

अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी। साहब बीबी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी, मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई, और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।

0: इस गजल को सुनने के बाद, मीना जी की आवाज को सुनने के बाद थोड़ा सा माहौल संजीदा हो गया
1: जी। और मनीषा जी, एक महान शायरा को हमने याद किया जो स्वयं एक बहुत बड़ी कलाकार भी थी, इसके बाद एक और शायर को याद करते हैं।
0: और वो अजीम शायर हैं
1: शकील बदायूनी साहब।
0: जी हाँ, 3 अगस्त शकील बदायूनी साहब का जन्मदिन है और आज हम उन्हें बहुत दिल से याद कर रहे हैं।
1: शकील बदायूनी साहब का जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था 1916 में, और उनके पिता का नाम था मोहम्मद जमाल अहमद सोख्ता कादरी, और कादरी साहब चाहते थे कि उनका बेटा भाषा का
0: जानकार
1: बने, और अरबी, हिंदी, फारसी और उर्दू के एक उस्ताद उनके घर आया करते थे पढ़ाने के लिए। और बचपन से ही मनीषा जी, उन्हें शायरी का शौक था और अपने दूर के एक रिश्तेदार से मुतासिर होके वो भी शायरी करने लगे। अलीगढ़ में उन्होंने एक नौकरी कर ली और मुशायरे में भी शामिल होने लगे।
0: जी हाँ, और बाद में शकील बदायूनी साहब ने मुंबई का रुख किया 1944 में। मुंबई में आने के बाद आप ए आर

0: मोहब्बत भरे तराने भी इन्होंने लिखे, कमाल की शायर। और श्रोताओं, एक बात हम आपसे जरूर साझा करना चाहेंगे, 1961, 1962 और 1963 ये तीन लगातार ऐसे वर्ष हैं जब शकील बदायूनी साहब की रचनाओं को नवाजा गया। 1961 में चौदहवीं का चांद हो, 1962 में हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, और 1963 में कहीं दीप जले कहीं दिल, इन गानों के लिए निरंतर 3 साल तक बेस्ट लिरिसिस्ट के अवार्ड से नवाजा गया।
1: इस महान गीतकार के एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है मनीषा,
0: और ये हमारी बहुत खास रिकॉर्डिंग है
1: जी। शकील बदायूनी साहब से बातचीत की मधुप शर्मा जी ने।
2: शकील साहब, क्या उम्र थी आपकी जब आपने सबसे पहला अपना कलाम लिखा?
3: मधुप साहब, मैं जिस शहर में पैदा हुआ था वो इल्म अदब का मस्कन था, मेरे इर्द गिर्द उर्दू शायरी का चर्चा था। मेरे चचा उस्ताद मौलाना जियाउल कादरी, जो बुलंद पाया शायर हैं, उनसे मैं इसला लिया करता था और मुझे शायरी का शौक था। इसलिए सबसे पहले सन 1930 में मैंने गजल कहने की कोशिश की और उस वक्त मेरी उम्र 14 साल की थी।
2: तो अब कभी उन पुरानी चीजों को आप देखते होंगे तो कैसा लगता है आपको?
3: जाहिर है कि इब्तदाई चीज फिर इब्तदाई होती है। जिस तरह आज की उम्र और बचपन की उम्र में फर्क महसूस करता हूँ, उसी तरह कलाम में भी।
2: अच्छा शकील साहब, फिल्म लाइन में आप किन ख्यालात के तहत आए?
3: मधु साहब, मैं फिल्म लाइन में आना नहीं चाहता था क्योंकि दिल्ली में सरकारी मुलाजिम था, लेकिन बम्बई के एक मुशायरे में कुछ प्रोड्यूसरों ने मुझे सुना और फिल्मी गाने लिखने की दावत दी। तो मैंने ये सोचा कि जिंदगी के लिए कुछ काम तो करना ही है।
2: जी हाँ जी।
3: फिल्म लाइन में अगर पहुंच गया तो अपने मिजाज का माहौल मिल जाएगा, इसलिए मैं मुलाजिमत छोड़कर बम्बई आ गया और फिल्म लाइन में शामिल हो गया।
2: अच्छा, तो सबसे पहली कौन सी फिल्म लिखी थी आपने?
3: मेरी सबसे पहली फिल्म थी दर्द।
2: शकील साहब, फिल्मों के लिए लिखना कितना फर्क है अदब में लिखने से?
3: मधु साहब, अदब में लिखने के लिए इतनी पाबंदी की जरूरत नहीं है, उसमें अपने ख्यालात, अपनी जबान, अपना वक्त मैसर होता है, लेकिन फिल्म में लिखने के लिए बहुत सी पाबंदियां हैं।
2: अच्छा।
3: नंबर एक ये कि हमें पर्दे के करेक्टरों के मूड के मुताबिक शायरी करना पड़ती है। यानी अगर करेक्टर गमगीन है तो हमें उस गम को महसूस करते हुए अपने कलाम में उसके जज्बात का इजहार करना पड़ता है।
2: जी हाँ जी हाँ।
3: और अगर करेक्टर खुश है तो उसी के मुताबिक हमें खुशी का गीत लिखना पड़ता है। और नंबर दो ये कि हमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि जबान आसान हो, जिसे सब समझ सकें।
2: सही।
3: और नंबर तीन ये बात है कि हमारी फिल्मों में आमतौर पर आप जानते हैं सिचुएशन एक सी होती है, यानी बैक वक्त बहुत से शायरों को मुख्तलिफ फिल्मों में एक ही तरह का गाना लिखना पड़ता है। चुनाचे हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि हम जो लिख रहे हैं वो सबसे अलग हो।
2: अच्छा, एक बात रह गई, कभी कभी तर्जों पर भी तो लिखना पड़ता है आपको शकील साहब?
3: जी हाँ, ऐसे भी गीत होते हैं जो तर्जों पर लिखे जाते हैं, और संगीत की दुनिया में चूंकि लिखने वालों को मीटरों की वैरायटी मिलती है, नए नए मीटर मिलते हैं, इसलिए जब कोई नई धुन नए मीटर पर लिखने के लिए मिलती है तो वाकई मधु साहब बड़ा लुत्फ आता है।
2: अच्छा, लेकिन शकील साहब, इन बंदिशों में रहकर आपके अंदर का शायर कभी कभी घुटन तो महसूस करता होगा जरूर?
3: जी हाँ, बंदिशें भी मिलती हैं और घुटन भी महसूस होती है, लेकिन अगर उन बंदिशों में कोई चीज हासिल हो जाती है तो यकीन कीजिए कि वो घुटन खुशी में तब्दील हो जाती है।
2: अच्छा शकील साहब, अदबी चीजें लिखने के लिए काफी वक्त निकाल पाते हैं आजकल आप?
3: जी हाँ, मैंने फिल्मी दुनिया में रहकर ही अपना दूसरा दीवान मुरत्तब किया।
2: अच्छा।
3: और मशायरों के लिए भी वक्त निकाल लेता हूँ। रहा मसरूफियत का सवाल, तो अगर फिल्मी दुनिया में ना होता तो किसी और रोजगार में मसरूफ होता।
2: जी हाँ जी हाँ।
3: मगर अपनी शायरी का जौक हर हाल में पूरा करना था, और दरअसल मधु साहब वही जिंदगी का मकसद है और वही असली सरमाया है जिसके साथ मेरा नाम वाबस्ता रहेगा।

0: मुझे ऐना उम्मीदी क्या कयामत है,
1: वाह वाह,
0: संभलने दे मुझे ऐना उम्मीदी क्या कयामत है, कि दामानी ख्याले यार छूटा जाए है मुझसे, कभी नेकी भी उसके जी में गरा जाए है मुझसे, जफाएं करके अपनी और शर्मा जाए है मुझसे। गालिब साहब की ये गजल, आशा जी की आवाज और संगीत
1: जी जयदेव साहब का।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संगीतकार जयदेव की।
1: मनीषा जी, हमारे जो सुधी श्रोता है
0: जी,
1: और जो संगीत के सच्चे चाहने वाले हैं, उनकी भी आंखें चमक उठी होंगी जब हमने जयदेव साहब का नाम लिया।
0: जी हाँ, और उनका एक इंटरव्यू हमारे पास है। जन्मदिन जयदेव साहब का 3 अगस्त को है, तो हम अपने श्रोताओं को वो खास रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं जो हमारे पास मौजूद है, जिसे हम आपके लिए चुनकर लाए हैं।
1: और जयदेव साहब से बातचीत की कांता गुप्ता ने।
2: जयदेव जी, एक बात मैं कहूं कि बहुत अरसे से मैं आपकी फिल्में, आपके गीत सुनती आ रही हूं, और हमेशा मैंने एक बात पाई है कि आपकी धुनों में, आपके संगीत में एक अजीब सी मिठास, एक अनूठापन है, और उसे हमने ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ने, सभी श्रोताओं ने उसको बहुत पसंद किया। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम दोनों एक ऐसी पिक्चर थी जिसकी वजह से बच्चे बच्चे की जबान पर एक नाम आया था, वो था जयदेव। मैं ये जानना चाहूंगी कि हम दोनों से पहले, क्योंकि हम दोनों का सफर तो उसके बाद का सफर हम लोगों के आगे है, श्रोताओं के सामने है, उससे पहले आप कहाँ थे, क्या करते थे?
3: कांता जी, मैं फिल्म लाइन में बहुत पहले आ गया था, 1933 में। तब फिल्मों में काम किया करता था और मैंने लगभग 6 पिक्चरों में काम किया। उम्र में चूंकि गाना क्वालिफिकेशन हुआ करती थी फिल्म लाइन में आने के लिए, और चूंकि मैं बचपन से गाता था तो मुझे बहुत जल्द काम मिल गया था। 1940 में मैं वापस चला गया था लुधियाना, अपने शहर में
2: जी।
3: और उसके बाद मुझे फिल्मों में काम करने को दिल नहीं रहा था।
2: यदि जी, एक बात पूछूं, आप काम करना कह रहे हैं, क्योंकि बतौर हम तो यही जानते हैं कि एक संगीत निर्देशक के रूप में, एक संगीतकार के रूप में आपको जानते हैं।
3: 1943 में मैं लखनऊ गया
2: जी,
3: और मैंने बाकायदा तालीम ली उस्ताद अली अकबर खान साहब के साथ
2: जी।
3: उनके साथ ही 1951 में वो जब बॉम्बे आए म्यूजिक डायरेक्टर बनकर आंधिया फिल्म में, मैंने उनको असिस्ट किया आंधिया और हमसफर में, तो 1951 से मेरा संगीत का काम शुरू हुआ।
2: संगीत का, और उससे पहले वही मैं जानना चाह रही थी कि इससे पहले जो आपने कहा मैं काम करता था, तो फिल्मों में काम करते थे या गाते थे?
3: फिल्मों में एक्टिंग किया करता था।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, ये पहलू तो आपका मालूम ही नहीं था हमें।
3: मेरी पहली फिल्म थी वामन अवतार, वीर भारत, सेंटर वाली, जोशी, काला गुलाब,
2: अरे वाह,
3: और आखिरी फिल्म थी फ्रंटियर।
2: यानी काफी फिल्में।

0: में दुखी?
1: 6-7 साल का। आप कैसे?
0: बतौर हीरो?
1: नहीं, मैं उन दिन में छोटा था, 15-16 साल का। तो हीरो के साथ, हीरो का भाई या हीरोइन का भाई,
0: साइड रोल्स जो रहते हैं। अच्छा, फिल्मों में म्यूजिक देना आपने शुरू किया 1900?
1: असिस्ट करना शुरू किया मैंने 51 में
0: जी,
1: अली अकबर साहब को। उनके जाने के बाद बर्मन दादा को, जो 54 से लेकर 61 तक
0: रहा।
1: इसी बीच में मुझे अपनी फिल्म जोरू का भाई, इंडिपेंडेंट फिल्म,
0: अच्छा,
1: जोरू का भाई किनारे किनारे, और एक फिल्म थी चेतनानंद साहब की बुद्धिस्ट सब्जेक्ट पर, मुझे उसका नाम नहीं याद है इस वक्त। ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब रही
0: जी, लेकिन इनके गाने तो मशहूर हुए,
1: गाने तो चले थे।
0: इन फिर भी जयदेव जी आप उस तरह स्थापित नहीं हुए थे
1: नहीं।
0: जिस तरह के हम दोनों के बाद।
1: एक सच में मुझे देवानंद ने हम दोनों फिल्म दी इंडिपेंडेंट। उसके बाद सुनील दत्त की फिल्म मुझे, जिन्होंने मैंने काम किया, म्यूजिक दिया, वो भी बहुत चला, बहुत पसंद किया गया।
0: कुछ साल तक हम दोनों के बाद तो लगता रहा कि हम आपको सुने, यानी बहुत कोशिश थी कि कहां जयदेव जी का म्यूजिक सुनने को मिले, उनके गाने फिल्मी सुनने को मिले, लेकिन हुआ ये कि कितना लंबा अरसा एक आ गया जहां कि जयदेव जी का कोई नाम नहीं सुनाई दिया, इसकी वजह क्या है?
1: कांता जी, ये मेरी जिंदगी में एक जो कुछ हुआ वो मेरे साथ ही हो सकता था और किसी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कभी रिटेलिएट नहीं किया लाइफ में, कभी मुड़कर वार करने की कोशिश नहीं की।
0: वो तो आपको देख के यूं भी लग रहा है।
1: तो हम दोनों का संगीत चलने के बाद और मुझे जीने दो का, मेरे अपने साथी, मेरे अपने दोस्त कुछ हिस्सा से पलट गए। मैं कुछ बेबस सा हो गया, उनके खिलाफ मेरा कुछ कहने को जी भी नहीं चाहता था, और मैंने जैसे वो जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया।
0: क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही है आपने।
1: मैं अपना शांति से काम करता रहा, और बाद में फिल्में मिली मुझे, रेशमा शरा मिली, उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला, गमन में नेशनल अवार्ड मिला। और वैसे मैंने अपने दिल से जो काम किया है, फिल्म चले या न चले वो तो मेरे बस की बात नहीं है, मुझे
0: मतलब तसल्ली होती है कि मैंने अच्छा काम किया। आपकी फिल्में में एक बात और, मैंने फिल्मी जो धुने हैं आपकी उसमें एक पुट देखा है लोक संगीत का, और दूसरा अंदाज रहता है शास्त्रीय संगीत का। ये दोनों ही किसी फिल्म में शास्त्रीय संगीत ज्यादा उभर के आया है, उसमें ठुमरी भी है, दादरा का भी रंग है उसमें, और लोक संगीत का भी रंग है। तो ये लोक संगीत से आप प्रभावित ज्यादा रहे हैं, शास्त्रीय संगीत से प्रभावित ज्यादा लिए, इसलिए आपने अपने गानों में इनका समावेश किया?
1: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि शास्त्रीय संगीत की बुनियाद होनी चाहिए, और हमारे फोक संगीत, हमारे देश का जो फोक संगीत है
0: जी,
1: उसमें तो सब गाने किसी न किसी राग पर आधारित हैं। इसके अलावा भी मैंने जैसे, चूंकि मैं जोधपुर में बहुत अच्छा रहा अली अकबर साहब के साथ, तो मुझे फोक म्यूजिक स्टडी करने का बड़ा मौका मिला
0: जी।
1: मेरी माता जी भी शुरू बचपन में फोक गाने गाया करती थी, तो और मुझे म्यूजिक की ट्रेनिंग जो मिली है शुरू से क्लासिकल की मिली है। मेरे गुरु थे उस्ताद बरकत राय जी, सरदार सोन सिंह, जावकर बंधु और अली अकबर साहब। तो क्लासिकल की ट्रेनिंग तो मेरी यहाँ हुई, और फोक की चूंकि मैं स्टडी करता रहता हूँ, म्यूजिक को पढ़ता रहता हूँ, और जिस प्रांत में जाता हूँ वहाँ का म्यूजिक सुनता हूँ, और उसको मैं फिल्म में फिर जब मौका मिलता है अच्छा इस्तेमाल करता हूँ। वरना मेरी सब धुनें जो होती हैं, मेरी कोशिश रहती है कि वो किसी न किसी राग पर तो होनी चाहिए। वो तो कोई भी धुन जो बनेगी वो किसी न किसी राग में जरूर होगी।
0: सही कहा आपने।
1: मगर फिल्म लाइन में ये एक बुरी बात समझी जाती है कि किसी से कह दिया जाए कि फला आदमी क्लासिकल म्यूजिक जानता है, तो उसके लिए बहुत खतरनाक बात होती है।
0: क्यों, वो कैसे?
1: जैसे मेरे केस में हुई
0: जी,
1: मेरे लिए मेरे कुछ दोस्तों ने अफवाह उड़ा दी कि जयदेव तो उस्ताद अली अकबर खान का शागिर्द है, उस्ताद अलाउद्दीन के घराने से है, और क्लासिकल
0: दे पाएगा।
1: बस वो क्लासिकल का जो लफ्ज था वो मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ, इसलिए मेरे पास जब भी कोई प्रोड्यूसर आते हैं तो वो पहले हाथ जोड़ देते हैं
0: कि भाई
1: क्लासिकल मत दीजिए।
0: लेकिन आपने फोक भी बहुत अच्छा दिया है, ऐसी बात नहीं है।
1: मैंने अच्छा दिया।

0: श्रोताओ, आज विविधा में हम एक के बाद एक आपके सामने मणि, मानिक, मोती सब चुनकर लाए हैं और आखिरी में एक बहुत चमकीला सितारा, हरफन मौला कलाकार, उनकी बात करेंगे।
1: मैं तो कहूंगा मनीषा जी, विविधा जो नाम है, ये अपने आप में सार्थक होने जा रहा है आज के प्रोग्राम में, क्योंकि हमने अदाकारों की बात की, शायरों की बात की, संगीतकार की बात की, कलाकारों की बात की, और एक कलाकार जो अपने आप में परिपूर्ण कलाकार है,
0: जिनमें ये सारी चीजें शामिल हैं।
1: बिल्कुल, वो अभिनेता भी है, गीतकार है, संगीतकार है और बहुत महान गायक कलाकार है, और फिल्मों का निर्देशन भी उन्होंने किया है, फिल्मों का निर्माण भी किया।
0: जी हाँ, एक बहुआयामी कलाकार, हरफन मौला, किशोर कुमार। किशोर कुमार गांगुली, सब जानते हैं कि आप खंडवा मध्य प्रदेश में जन्मे थे, कौन नहीं जानता है।
1: 4 अगस्त 1929 को जन्मे थे किशोर कुमार, उनका मूल नाम था आभास कुमार गांगुली।
0: और किशोर कुमार जी को याद करते हुए उनकी धर्मपत्नी लीना चंदावरकर जी ने विविध भारती को एक लंबा इंटरव्यू दिया था, आपसे बातचीत की थी कमल शर्मा जी ने। श्रोताओ, ये खास रिकॉर्डिंग हमारे पास है और हम किशोर जी की यादों को एक बार फिर संजोकर आपके लिए लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं इसी इंटरव्यू के कुछ संवादित अंश और याद करते हैं महान कलाकार किशोर कुमार को।

पहली मुलाकात, वो तो उन्होंने मुझे प्रपोज किया, मतलब फिल्म के लिए एक ऑफर लाए थे। तब मेरे पहली शादी ट्रेजेडी हुई थी, सब जानते हैं, और मैं बहुत दुखी थी, तो मैं काम कर नहीं सकती थी। मुझे कई लोगों ने कहा था, जया जी ने, अमित जी ने, कि आप अभी कुछ नहीं हो सकता, तो काम कीजिए, लेकिन मैं, मेरे लिए हंसना रोना या जो भी है बहुत मुश्किल मालूम होता था। तो ऐसे वक्त में एक जादूगर की तरह आया।

कहते थे कि तुम एक अच्छे कलाकार हो, अच्छी लड़की हो, तुम काम करो फिल्मों में. तो मैंने कहा था नहीं नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद में एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो सीनियर थे और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से मुझे 3 कहानियाँ सुनाई. पहले वाली मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी, दूसरी वाली भी मैंने कहा कि मैं, फिर तीसरी वाली जिसमें एक नन का रोल मुझे दिया उन्होंने, प्यार अजनबी है. और उसके बाद काफी टाइम के बाद एक बार मैंने खाना बना के भेजा था, घर वाले भी हैरान हो गए कि लड़की जो हंसती नहीं थी, बोलती नहीं थी, अब फोन आने पे उनसे बात करती तो हंसती तो है कम से कम. तो वो बड़े खुश कि इन्होंने कम से कम उसको वापस जिंदा कर दिया, एक वेजिटेबल की तरह जिंदगी जी रही. बाद में उन्होंने मुझे बताया कि डैडी ने बोला कि हम नहीं चाहते कि लीना और फिल्में करे, हम उसकी वापस शादी करना चाहते. वो बाद में शादी के बाद उन्होंने बोला, इसलिए उन्होंने प्रपोज जल्दी किया मुझे.

0: अच्छा, आप में वो चाहत थी उनके लिए जैसी उनके मन में थी?
1: नहीं, क्योंकि उस समय ये था कि मैं अपने पहले हस्बैंड को नहीं भूल पाई थी और वो बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने उन्होंने जब प्रपोज किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। घर में कोई गेस्ट आए थे, मेरे रिलेटिव आए थे गांव से, तो मैंने खाना बनाया, फिर से मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि खाना बना रही हूँ। वो मेरा एक बहुत बड़ा एक वो था। तो ये बता रहे कि वो खाना जब भेजा तो बड़े खुश हो गए, बता तुम खाना बना सकते हो? मैंने कहा क्यों नहीं, क्योंकि ज्यादातर तो जो फिल्म में काम करते हैं उनको खाना बनाना सिर्फ आता नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे बहुत शौक है, आप बोलिए क्या खाएगा। फिर मैंने भेजा उस दिन, एक्चुअली मैंने खाना क्यों भेजा अभी बताते हो। हमेशा वो फोन करते थे तो इतने जिंदा दिल होते थे, कुछ न कुछ बोल के हंसा ही देते थे या फिर हेलो नहीं बोलते थे, हाँ क्या कर रही हो, फिर बाद में वो उस दिन तुमने ये बोला था ऐसे स्टार्ट करते थे, तुम्हें कौन बोल रहे हैं आप तो बस तो मुझे ऐसे शॉक लगता था कि कोई ऐसे एकदम से कैसे बात करता है, हेलो नहीं कुछ नहीं, तो तुम मेरी आवाज भूल क्यों जाती हो। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, और काफी उन्होंने मुझे नॉर्मल कर दिया और बहुत अच्छा लगता था उनसे बात करते। लेकिन बात ये हुई कि एक दिन वो बड़े सैड लगे मुझे, तो मैंने कहा कि आप क्वाइट क्यों है, आप तो इतना मतलब हमेशा जिंदा दिल रहते। कहने लगे मैं लियो हूँ ना, कभी कभी क्या होता है शाम होती है तो सूरज डूबने के बाद अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैंने कहा ये तो कमाल है, शाम तो अच्छी होती है प्यारी होती है। तो मैंने लगे अमित भी नहीं है, वो भी कलकत्ते में माँ के पास गया और शायद देर से आएगा, अभी तो एक महीना वहां रहेगा। तो मैंने कहा अच्छा तो तुम क्या कर रही हो बोलो। तो वो फिल्म में तो मैं काम कर ही रहती हूँ, तुम क्या कर रही हो? और पहले मैंने कई लोगों के साथ काम किया लेकिन ऐसे पर्सनली कभी, पापा इतने स्ट्रिक्ट थे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैंने कहा मैं खाना बना रही हूँ। तो बड़े खुश हो गए, तुम्हें आता है खाना बनाना तुम्हें? हाँ। तो मैंने कहा भेजू आप खा के देखो? तो बोलते हाँ मुझे जल्दी भेजना, मैं जल्दी सोता हूँ तो मुझे 8 बजे भेजना खाना। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने भेजा तो बहुत खुश हो गए। और दूसरे दिन उनका फोन आया।
0: क्या बनाया था आपने?
1: मैंने बनाया था कश्मीरी पुलाव बनाया था, उनको जो पसंद है वो सारी चीजें बनाई थी, पूरी और तरकारी। मैंने सुना था उनके मुंह से कि ये चीजें, लेकिन हर एक का बनाने का स्टाइल अलग होता है, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो बोलने लगे कि तुम बहुत अच्छी कुक हो, तुम ही ने बनाया था कि किसी और ने बनाया था? मैंने कहा ये तो मैं आपके घर में बना सकती हूँ। तो बोलते कि देखो मुझे पता नहीं मैं कैसे कहूँ, लेकिन हम अगस्त वालों को वैसे शादी वादी करनी नहीं चाहिए, हमारा जमते नहीं किसी के साथ। मैं भी अगस्त हूँ लेकिन लास्ट वीक और फर्स्ट वीक में। तो बोलते कि फिर भी अगर कभी जिंदगी में सोचो कि घर बनाना तो मेरा प्रपोजल पहले।
2: जरूरत है, जरूरत है, सख्त जरूरत है।
1: तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा मुझे नहीं करनी आपकी फिल्म। तो बोलते क्यों? तो मैंने कहा आप जिसके साथ काम करते हो उनके साथ शादी करते हो, जिनके साथ भी आप एक्टिंग करते हैं, आपके लिए शादी का कोई मायने नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं। तो तुमने मुझे बहुत गलत समझा। तो मैंने कहा नहीं मुझे ऐसे ही लगता और मुझे लगता कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी चाहिए। तो बोलने लगे कैंसिल कर दो, सुन के कैंसिल कर दो, अब मैं कभी नहीं पूछूंगा और तुम सिर्फ फिल्म करो। तो फिल्म से क्यों बैकआउट हो रहे? तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, वो सिर्फ काम से मतलब रखते थे और शादी तो भूल ही गए। एक दिन ऐसे मैं सोच रही थी कि मम्मी डैडी को लोग बोल रहे कि मेरी कुछ नानी आई हुई थी तो बोलते इनकी शादी कर दो, तो फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं, तो मुझे इतना पता नहीं क्या लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उस समय मैंने रात को 1 बजे फोन किया, झगड़ा हो गया था मेरे घर में,

तो मैं किसी अजनबी से शादी नहीं करना चाहती थी। तो मैंने फोन करके बोला, उस दिन जो आपने बोला था वो आपने सीरियसली बोला था, ऐसे मजा किया था? तो सीरियसली बोला था। तो मैंने कहा तो आप मुझसे शादी करेंगे? तो क्यों नहीं करूंगा, मैं तो सीरियस हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी हो तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं शादी करने के लिए गया, तो बोलती इतनी अच्छी बात तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे जूता मार रहे। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी इस वक्त ऐसे मूड में हूँ कि कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग जहाँ बोल रहे हैं वहाँ मैं नहीं करूंगी। अच्छा, तो फिर मैं आऊँ लेने? मैंने कहा नहीं, ऐसे मैं नहीं आऊंगी, मैं अपने हिसाब से आऊंगी। और उन्होंने वाकई मतलब एक पनाह ही समझ के उन्होंने शादी की थी। और उसके बाद में मैं खुद अपनी तरह से, उनको मालूम था कि किसी न किसी तरह ये पत्नी की तरह अपने फील करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी।

0: मैं सच कहूँ तो बोलते हैं कि जब पत्नी बन जाए ना, मतलब वो मेरे बहुत करीब थे, तब तक मैंने उनको, वो मुझे हमेशा कहते थे घर की मुर्गी दाल बराबर। एक दिन उन्होंने कहा था कि लीना देखना, एक ही दिन मरूंगा मैं, और बस उसके बाद मैं हमेशा हूँ लोगों के साथ, लोगों के दिलों में, मुझे लोग भूलेंगे ही नहीं, देखना मैं बरसों हो जाएंगे फिर भी मुझे मिस करेंगे, मेरे जैसा थोड़ा भी कोई गा देगा उसे गाएंगे। मैंने कहा बाप रे, लियो प्राइड बोल रहा है। मैंने लियो थे ना 4th अगस्त, तो मैंने कहा ये कुछ नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये आप याद रखो। बड़े से बड़े महात्मा लोगों को भी एक ही दिन याद किया जाता है, जबकि उनका या तो बर्थडे होता है या तो एनिवर्सरी होती है। कहने लगे बिल्कुल गलत, तुम मेरी पत्नी हो ना, इसलिए, क्योंकि पत्नी कभी पति का मोल नहीं जान सकती। फिर उन्होंने अमित को बुलाया, बोलते हैं कि अमित यहाँ बैठो, आज मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा आप क्या गारंटी है कि आप पहले जाओगे, हम में से कोई भी पहले जा सकता, तो ये बातें क्यों हो रही है। तो बोले लगे नहीं नहीं, अगर तुम पहले जाओ तो बात सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन अगर मैं पहले जाऊँ तो तुम देख लेना कि लोग मुझे ढूंढेंगे, और मैंने ऐसी एक जगह बना ली उनके दिलों में, कभी नहीं मिटाया जा सकता। तो मैंने कहा मैं तो नहीं मानती इस चीज़ को, भूल जाते हैं लोग। तो फिर दो नए नए सिंगर्स आते हैं, नए नए स्टाइल बनती है, तो उनको बहुत बुरा लगा। बोले लेकिन नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं भूलेंगे लोग, बल्कि मेरे जैसे कोई 25% भी गा देगा उसको गवा देंगे। हाँ मतलब देखिए क्या बात
1: है,
0: बिल्कुल। आज जब मैं सुनती हूँ उनको, कहीं भी या टीवी ऑन करती हूँ या रेडियो ऑन करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्यों ऐसे वो बोल रहे हैं मुझे।

0: हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार साहब को हमने याद किया इस रिकॉर्डिंग के जरिए, और अब क्या बचा है?
1: बिल्कुल वक्त ही नहीं बचा और अब जैसा कि आपने पहले भी कहा कि विविधा बहुत विविध रंगी रही आज की, इन तमाम रंगों को हम समेटते हैं। श्रोताओं, आप सबसे चाहते हैं इजाजत, अगली विविधा की प्रतीक्षा कीजिएगा, उसमें भी कुछ खास होगा। तो अब दीजिए अपनी दोस्त मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर को इजाजत। नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म एलओसी करगिल से। आवाज है रूप कुमार राठौड़ की, जावेद अख्तर की रचना है, अनु मलिक का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं क्रांति फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में संतोष आनंद की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। वर्मा मलिक के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज।

0: अरे सुनो।
1: हाँ?
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ, कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा।
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला।

0: वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
1: और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम एक टेक्स्ट या इबारत पोस्ट करते हैं, उसमें कुछ शब्द होते हैं और कुछ भाव होते हैं। उन शब्दों से आपको चुनने होते हैं गाने और उन भावों से लिखनी होती है आपको टिप्पणी। तो आज की इबारत हम आप तक पहुंचा दें। जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं है, उनके लिए खास तौर से, जो लोग जुड़ चुके हैं तो इन शब्दों को तो चुने ही, गानों को तो चुने ही, लेकिन इनमें जो भाव छुपे हैं, जो सवाल छिपे हैं, इससे जुड़ी हुई बातें भी साझा करें। जिंदगी एक रोज कान में कह गई एक बात, ये आज की इबारत है जो पढ़ रही हूँ। जिंदगी एक रोज कान में कह गई एक बात, प्यार वो वृक्ष है जहाँ धूप छांव दोनों होते हैं। बताइए अब धूप छांव वाले गाने। गम की कड़ी धूप में कहती है जिंदगी, हाय वो दिन कहाँ गए, वापस क्यों ना आए। इस पर तो बहुत सारे गाने होंगे। फिर मुस्कुरा कर बोली जिंदगी, दुनिया एक मेला है, यहाँ हर चेहरा अपना नहीं होता, न मिले फूल तो कांटों से दोस्ती कर लो। फिर एक रोज जिंदगी कान में आकर धीरे से बोली, हर किसी की मोहब्बत में वफा नहीं होती, लेकिन बेवफाई का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। फिर एक रोज जिंदगी मुस्कुराई और बोली, लिखो एक खत और वादा करो। यहाँ पर कौन सा गाना आपको याद आया, चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले पूरे करने हैं अपने सारे ख्वाब, नींद में देखे सपने भले कहाँ पूरे होते हैं, भला कहाँ पूरे होते हैं, सपने पूरे होते हैं उनके जिनमें होता है हौसला, और फूलों से भी घर बना लेते हैं। फिर जिंदगी आखिरी बात ये बोली कि शिकायतें कम करो, सफर से मोहब्बत करो, जो राह चुनी है उसी पर चलते जाना। तो अब तो मुझे लगता है पढ़ने के बाद आपके जहन में बहुत सारे गाने कौंध रहे होंगे। कौन से वो गाने हैं जो इस वक्त कौंधे हैं, लिखिए जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप कीजिए, पहुंच जाएंगे वहां, और साथ में हमारी बातें और हमारे सवालों के जवाब भी देते चलिए। यहाँ आज एक शब्द आया है मेला, तो जरा बताइए कि मेले से जुड़े हुए कौन से गाने आपके जहन में आए हैं, और आप ये भी बताइए कि मेला देखने आप पिछली बार कब गए थे और मेले से जुड़ी हुई कौन सी याद है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम मेला वाला गाना यहाँ सुनाएंगे, जी नहीं, आप मेले वाले गाने चुनिए। अगर बहुत सारे श्रोता कोई अच्छा सा

गाना चुन लाएंगे तो हम वही गाना आपको सुनवाएंगे। फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना फिल्म साथ साथ। पहली लाइन में ये शब्द कहीं आता है इस गाने से जुड़ा हुआ, जरा पूछिए और बताइए। हाँ, हीरो हीरोइन के नाम भी आपको पूछने हैं तो आज आपको पूरे सफर में सुरीला सफर के साथ रहना है और बीच बीच में जो सवाल हम पूछते जाएंगे उसके जवाब भी देने हैं आपको। हीरो हीरोइन का नाम फिलहाल पूछिए।

साथ साथ फिल्म की ये गजल थी, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें थी, जावेद अख्तर के बोल थे, और हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, दीप्ति नवल, फारूक शेख। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया, सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपकी इबारत की पहली पंक्ति में बिल्कुल सही वर्णन, प्यार में धूप छांव होती है परंतु

प्यार करने वालों को भी तो वृक्ष की तरह खुद धूप सहते हुए अपने साथी को छांव देना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है, भाई एक नहीं अनेक श्रोताओं ने लिखा है, जो राह चुनी तूने और मेले से जुड़े हुए बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिखा है और दुनिया का मेला, मेले में लड़की और दुनिया ये मेला है, और मेले पर तो बहुत सारे गाने भेजे हैं हमारे श्रोताओं ने, जो फिल्म गुप्त का है उदित नारायण की आवाज में, दुनिया हसीनों का मेला। एक श्रोता ने लिखा है कि तुमको देखा तो ख्याल है सिर्फ एक प्रेम गीत नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के यथार्थ और मोहब्बत के सुकून का अनूठा संगम है। ये गाना सिखाता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि जीवन में सच्चा हम सफर हो तो जिंदगी की धूप भी घने साए में बदला जा सकता है। जरा बताइए कि अब कौन सा वाला गाना हो सकता है, क्योंकि जो हाय रे वो दिन क्यों ना आए कि गाना आया आपके जहन में क्या? अगर इसके अलावा कोई गाना आया हो तो बताइए। हम फिलहाल यही गाना सुनवाते हैं, फिल्म अनुराधा। आपको बूझना है कौन हीरोइन कौन हीरो। और साथ में गीतकार संगीतकार का नाम अगर पता है तो वो भी बताइए। फिल्म अनुराधा। और मेले से जुड़ी हुई याद भी साझा कीजिए।

ये जो गाना था इसका शब्द बाकायदा जो इबारत है, इबारत की शुरुआत में ही आ जाता है, लेकिन इस गाने का जिक्र बहुत कम मिला। हालांकि बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं और अनगिनत गाने लिख रहे हैं, कहीं धूप तो कहीं छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसके जीवन है वो नाम, कहीं धूप तो कहीं छाँव, कवि प्रदीप की रचना है। और ये बहुत सारे श्रोताओं ने गाने के बोल लिखे हैं, जिंदगी के मेले कभी कम ना होंगे, फिल्म मेला। और एक श्रोता ने लिखा है कि तुमको देखा तो ख्याल आया, फिल्म साथ साथ का एक कालजयी गीत सुनाया आपने, और अनगिनत श्रोताओं की अनगिनत टिप्पणियां आई हैं और

हम आपको बारी बारी से सुनवाते चलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन के वो दिन भी क्या दिन थे, भाई बहनों के साथ खंडवा के बीच लगने वाले नाम सप्ताह के मेले में जाना, झूले झूलना, वो चहल पहल और फिर वही परंपरा अपने बच्चों के साथ दोहराना। ये अनुभव दिल के बहुत करीब होता है, वक्त कितनी तेजी से बदल जाता है, लेकिन शहर और वहां के मेले से जुड़ा लगाव कभी कम नहीं होता। एक श्रोता ने और लिखा है कि मेले का जिक्र हुआ तो अभी हमारे शहर में मेला लगा हुआ है और ये बात सुनकर हमें याद आ गया। तो जरा बताइए कि मेले वाली कौन सी याद इस वक्त आपके जहन में आई है, मेले में कौन सी चीज आप जाकर खरीदा करते थे, क्या वो मेले में जाकर वो जो बुढ़िया के बाल है वो याद आया कि वो खरीदते थे, और खिलौने मिट्टी के लकड़ी के बहुत सारे खिलौने खरीद कर ले आते थे वो याद आया, और फिर जो सस्ते दामों पर किताबें मिलती थी क्या वो भी याद आया, और वो भी याद आया कि कभी अपने पिता की उंगली थामकर माँ की उंगली थामकर मेले में आप घुमा करते थे और कभी उंगली छूट गई तो कितनी घबराहट होती थी, ऐसे लगता था अब क्या होगा, अरे कहाँ गए, बस रोना आता था। कभी ऐसा भी हुआ? मेले में जाने के बाद तो अनगिनत अनुभव हैं, तो उनमें से कुछ अनुभव आप साझा कीजिए। फिलहाल चलिए मेले का ही गाना सुनवा देते हैं, ये रहा ये गाना। अगर हाँ आपके जहन में और कोई गाना आ रहा है तो जरूर बताइएगा, अगर आपने टिप्पणियां भेजी तो एक गाना मेले का और सुनवाएंगे।

मेला फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज थी, शकील बदाविनी के बोल थे। और इससे पहले हमने अनुराधा फिल्म का गाना सुनवाया था, लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना, रविशंकर का संगीत था। और कलाकारों के नाम भी हमने पूछे थे, लीला नायडू और बलराज साहनी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल पूरी और सही जानकारी लिख भेजी है। और ये जो मेले वाला गाना था, इससे जुड़ी हुई भी बातें बहुत सारे श्रोता हमें लिख भेजे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में दशहरे का मेला जाते थे और वो मजा आज के बच्चे नहीं जान सकते हैं, और मेले से खिलौने खरीदा करते थे, एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनुराधा फिल्म का कालजयी गाना और सुनहरे पलों की याद और वर्तमान के अकेलेपन की एक बेहद खूबसूरत और दर्द भरी अभिव्यक्ति है। दरअसल जब बात मेले की चली है तो हम भीड़ भरे मेले में होते हैं कई बार, तब भी अकेलेपन का एहसास होता है, उस एहसास को भी आप साझा कर सकते हैं। एक आज के जमाने में खास तौर से यह एहसास हर किसी के दिल में होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि लता जी की आवाज जो हाय रे वो दिन क्यों ना आए, दिल की अतल गहराइयों में उतर जाती है।

श्रोताओं ने जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1968 में उज्जैन कुंभ मेला संतों की भीड़ भरी रैली में माताजी का हाथ छूट गया। शाम को जाकर पुनः उसी जगह माताजी और अन्य सदस्यों से मुलाकात हुई, राहत की सांस ली। एक श्रोता ने लिखा है कि बालपन में तो मेला देखने बहुत जाते थे, कुल्फी चाट पानी के बताशे खूब खाते थे और खिलौने खरीदने के लिए पैसे पहले से बचाने लगते थे। विजयदशमी पर तो मेला लगता ही था, उसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती। क्या बात है भाई, पानी वाले जो बताशे जिसे पानी पूरी भी कहा जाता है, और मेले में झूले झूलने का मजा भी होता था, एक श्रोता ने लिखा है। और मेले में जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता था जो अनुभव, वो था जो हिंडोला, जो बड़ा वाला हिंडोला गोल गोल चलता है, तो जब ऊपर की ओर जाता था हिंडोला तब तो ठीक, जब नीचे की ओर आता था तब कैसा एहसास होता था, ऐसे लगता था कि दिल की धड़कनें तेज हो गई और बिल्कुल दिल मुंह में चला आया है ऐसे। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी चलने का नाम है, कभी सुख है कभी दुख है, राह में कांटे भी मिलेंगे फूल भी मिलेंगे, प्यार बेवफाई सपने को सच भी करना है, ख्वाब देखना उसे पूरा करने की चाह, तभी पूरा होगा जब हौसला हो। अब ये महल फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है गीतकार और संगीतकार का नाम। हमने जो इबारत लिखी थी उस इबारत में कौन सा ये शब्द आ रहा है, जरा बताइए गाने में कौन कौन से शब्द हैं। गीतकार संगीतकार का नाम बूझिए।

महल फिल्म का गाना किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने संगीतकार का नाम गलत लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेले में बंदूक से निशाना लगाना अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गंगा दशहरे के मेले में मिट्टी के बर्तन लाते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में नवरात्रि के मेले में जाता था तो मुझे किसी भी रखी वस्तु पर लकड़ी की रिंग डालना अच्छा लगता। उसमें जिस वस्तु पर रिंग गिरेगी वो वस्तु अपनी हो जाती थी, लेकिन मुझे कभी कोई वस्तु मिली नहीं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में जाकर दादाजी के साथ चुटहिया जलेबी खाना याद आ गया। क्या बात है भाई, वो जलेबी कहीं कहीं कभी कभी मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल्ली के लाल किले के मैदान में मेला लगता रहता है और विभिन्न प्रकार के झूले लगते हैं। मैं जब भी मेला जाता हूं सबसे पहले ऊंचाई वाला झूला जरूर झूलता हूं, जिसे जॉइंट हील कहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेले में मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने वाले बर्तन जरूर मैं खरीदती थी और वो कपड़ों वाली गुड़िया भी। फिर हम अपने छोटे से घरौंदे में गुड़ियों के साथ खाना पकाते, शादी ब्याह करते। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेले में एक छोटा सा प्लास्टिक का गिलास कीमत हर माल 6 आना का खरीदा। उसमें पानी भरने पर अंदर फिल्मी हीरो हीरोइन की फोटो दिखाई देते थे, उसे स्कूल के साथियों को दिखाते थे। क्या बात है भाई, गजब के अनुभव हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में लगने वाले ऊंचे झूले पर आज तक हम नहीं बैठ पाए। और गानों के बोल बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बलिया में ददरी मेला लगता है, हर साल कार्तिक पूर्णिमा से वो मेला शुरू हो जाता है और 1 महीना चलता है। उस मेले में गुड़ की जलेबी और गांव की महीन कारीगरी डलिया सूप और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। शादी के बाद मेरठ में नौचंदी मेला लगता है जो रात के टाइम लगता है और पूरी रात चलता है। इस मेले में नौटंकी भी आप देख सकते हैं और संगीत भी सुन सकते हैं। सचमुच एक जमाना था जब मेले में नौटंकी भी खेली जाती थी, तो नौटंकी देखने के लिए अलग से घर वालों से परमिशन लेना पड़ता था। आपके साथ भी ऐसा हुआ? एक श्रोता ने लिखा है कि 90 के दशक में हमारे इंदौर शहर के गांधी हॉल में सावन का मेला लगता था और उस मेले में हर सोमवार को बहुत भीड़ होती थी। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत पीपल के पेड़ पर रस्सी पर बंधा हुआ पटिया लगा हुआ झूला हुआ करता था। अब बहुत सारे श्रोताओं ने शब्द लिखे हैं, सपने, वादा, वफा, कांटे, दुनिया, दिन वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है, प्रेम की भावना को इस सतर्क दृष्टि से जीना कि वो अंततः सुखद होगी या दुखद। प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम सिर्फ प्रेम होता है। टूटने बिखरने की पीड़ा, धोखे का दर्द और प्रेम की राह पर आने वाले धूप छांव, इन सब से इतर वो जब होता है तो बस होता है। आप चाहें न चाहें वो आपके साथ हो लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें जीवन की सच्चाई समझ आने लगती है। शांत स्वभाव यूं ही नहीं हो जाता, परिस्थिति और जीवन की समझ आपको राख में परिवर्तित करके आपके मन को ठंडा रखती है। प्रेम और जीवन का कोई बदलाव फिर आप पर असर नहीं करता, आप हर समय चुपचाप चलना सीख जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, बूझिए कौन है हीरो और बूझिए गीतकार का नाम। हीरो का नाम फटाफट बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिल्म है दिल ने पुकारा।

दिल ने पुकारा। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी इंदिवर की, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इसका जवाब हमारे श्रोताओं ने सही दिया और कलाकार का नाम भी बिल्कुल सही लिखा है, शशि कपूर। हालांकि इस गाने में वफा शब्द आता है जो हमारी इबारत में है, लेकिन असल में तो है बेवफाई का गाना। तो आपको अभी कौन सा गाना सुनना है? इस समय आपके जहन में कौन सा शब्द और कौन सा गाना गूंज रहा है? हम जो सुनवाने जा रहे हैं यही या कोई और, जरा ये बताइएगा। और जो भी गाना सुनवाएंगे उससे जुड़े हुए कौन से गाने आपके जहन में कौन थे ये भी बताइएगा। फिलहाल आपने क्या लिखा है जरा हम बता दें। जिंदगी किसी किताब की तरह नहीं, एक हम सफर की तरह होती है। हर दिन एक नया पन्ना नहीं, एक नया एहसास देती है। जो उसकी हर बात को दिल से सुन ले, उसके सफर में शिकायतें कम और मुस्कानें ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर बात बेवफाई की हो तो फिर शिकायतें ही शिकायतें।

जरा सुनिए ये गाना और बताइए इस समय आपके जहन में कौन से गाने आ रहे हैं जिसमें वफा शब्द हो और बेवफाई भी हो। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, हीरो हीरोइन का नाम बूझना है और गीतकार का नाम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गुलजार के बोल थे, खयाम का संगीत था। और अब मेले का जिक्र चला तो हमारे बहुत सारे श्रोता, यूं कहें कि सभी श्रोता मेले में चले गए हैं और मेले से निकल नहीं पा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। चलिए हम भी गुम हो जाते हैं उसी मेले में। अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेले में जाना, जलेबी खाना, मिट्टी की गोलक, लकड़ी का घोड़ा बचपन में लेना नहीं भूलता था। एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, लिखा है कि हामिद का चिमटा याद आया, दादी की कहानियां याद आई। तो अब हामिद के चिमटे से मुझे प्रेमचंद की कहानी याद आई, तो जरा आप बताइए कि ये जो हामिद का चिमटा, हामिद चिमटा ले जाते हैं अपने दादी के लिए, सारे बच्चे बहुत सारे खिलौने खरीदते हैं मेले में जाकर, और ईद का त्योहार है और हामिद अपना जो पैसा बचाता है और अंत में दादी के लिए चिमटा खरीदता है और अपने दोस्तों में बहुत पुल बांधता है, डींग हाँकता है, देखो मैं तो कितनी अलग तरह की चीज खरीदता हूं। तो पहले सारे बच्चे उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, लेकिन बाद में उस चिमटे के लिए ललक दिखती है बच्चों में। तो बहरहाल अब आप जरा बताइए, थोड़ी सी कहानी भी मैंने बता दी, तो कौन सी कहानी है? अब आपको कहानी का शीर्षक पूछना है। हाँ, हमें आपके जवाब का जल्द इंतजार रहेगा। अगर आपने पढ़ी होगी कहानी तो जरूर बता सकते हैं। और अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि बाजार का मेला और जीवन के मेले में बहुत अंतर है। दुख सुख मान अपमान सभी तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन ये जीवन है। दरअसल ये दुनिया भी तो एक मेला है। इस मेले में हम सब कहीं कई बार गुम हो जाते हैं, बस उसी मेले से निकल बाहर आते हैं और अपनी राह चुनते हैं। राह चुनने के लिए कई बार अवरोध भी पैदा होता है। तो आप ये भी बताते चलिए हमें कि क्या कभी आपने कोई राह चुनी मंजिल के लिए और किसी अवरोध का, किसी स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ा? मतलब बहुत सारे टोक टाक घर वालों ने वो मंजिल जाने पर, मंजिल तक पहुंचने पर ब्रेक लगा दिया हो और कहा हो कि नहीं, इस रास्ते से आप नहीं चलेंगे। तो ये बताते चलिए। और मुझे लगता है कि इस बात से जुड़ा हुआ कोई गाना आपके जहन में आ रहा होगा जो हमारी इबारत में है शब्द, तो वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गोराई बीच के पास जहां विविध भारती मुंबई रेडियो स्टेशन है, उसके पास एसएल वर्ल्ड है, कहीं पर बहुत सारे राइड्स हैं, उनमें से रेनबो में बैठे थे। जब ऊपर जाते तब तो ठीक था, लेकिन जब नीचे सीधा उल्टा आता था तो सांस फूल जाती थी। तब 55 राइड थी उसमें और उनमें से 50 राइड्स में हम सब बैठे थे, लेकिन उसके बाद जाने का नाम नहीं लिया। अब तो बहुत सारे राइड्स हैं और ऐसे राइड्स हैं कि जिसमें जो ट्रेन की शक्ल है, जो चलती है, तो फिर ऐसी चीख सुनाई पड़ती है कि आप एकदम डर से कांप जाएं। बहरहाल अपने अपने अनुभव, लेकिन वो जो असली मेला लगता था खुले मैदान में, बहुत सारी चीजें होती थीं, बहुत सारे लोग मिलते थे और एक दूसरे से सुख दुख साझा करते थे, उस मेले की बात ही अलग है। अब कहाँ है वो मेला? एक श्रोता ने लिखा है कि मैं 6 वर्ष का था तो पिताजी की उंगली पकड़कर चला जा रहा था, एक छोटा पड़ा हड्डी का टुकड़ा उठा लिया, भीड़ में पिताजी ने अपने कंधे पर बिठा लिया। उस 5 इंच के टुकड़े से मैं अपने पिता के सिर पर टक टक बजाता जा रहा था। उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने नीचे उतार दिया और फिर उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया और थोड़ी देर के लिए बहुत नाराज हो गए। ऐसी तमाम बातें श्रोता याद कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो 24 घंटे मेला मोबाइल में लगा रहता है, सभी तरह के तमाशे और सभी तरह की खरीदारी हो सकती है। तो ऐसे में कौन सा वाला मेला आपको अच्छा लगता है, वो वाला मेला, बचपन वाला, ये, या फिर मोबाइल वाला मेला? एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में लगने वाले ऊंचे झूले पर आज तक नहीं बैठे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि अभी बिहार में राजगीर में अधिक मास का मेला लगा था जो 1 महीने तक चला। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के मेले, दिवाली के मेले, दशहरे का मेला और भी बहुत सारे मेले देखे हैं। बचपन में गुड्डे गुड़िया, चरखी फिरकी आदि, मिट्टी के, लकड़ी के खिलौने, गुल्लक आदि खरीदते थे, पर अब तो भीड़ भाड़ से भी डर लगता है। अब भीड़ भाड़ का भरोसा भी नहीं रहा कि कब कौन आपके पैर कुचल के आगे बढ़ जाए, क्योंकि अब वो संवेदना कम हो रही है लोगों में। इस संवेदना को बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहरहाल बात हमने पूछी थी आपसे कि जब आप कोई राह चुनते हैं तो उस राह पे चलते हुए क्या

कभी कोई अवरोध पैदा किया किसी ने, आपके परिवार ने, समाज ने, ये बताइए। और साथ में ऐसा ही एक गाना और बताइए जो इस गाने से मेल खाता हो। और हाँ, एक सवाल और था, हामिद का चिमटा दादी के लिए प्रेमचंद की लिखी ये कौन सी कहानी है? फिल्म तपस्या है, आपको पूछना है साथ में हीरो हीरोइन का नाम। बहुत सारे सवाल हैं एक साथ, देखते हैं कौन कौन से सवालों के जवाब आप दे पाते हैं।

0: उस राह पे राह ही चलते जाना रे तपस्या फिल्म का गाना था और हमने पूछा था कौन है हीरो हीरोइन। सभी श्रोताओं ने सही और त्वरित जवाब दिया, राखी और परीक्षित साहनी। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए सिटी से बाहर जाना था लेकिन दादा दादी ने रोक लिया, यही पढ़ाई करो, बाहर नहीं जाने मिला। और एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी एक सफर है जिसमें विभिन्न पड़ाव आते हैं, उन पड़ावों से गुजरते हुए कई मुकाम आते हैं, आज के सफर में वही यादों का सफर है। एक श्रोता ने लिखा है कि रिटायर्ड होने के बाद जब गुजरी जिंदगी का हिसाब देखता हूं तो पता चलता है कितनी कठिन थी ये जिंदगी, लेकिन पत्नी का साथ और ईश्वर के आशीर्वाद से आरामदायक रही जिंदगी। और अब जो हमने सवाल पूछा था उसकी बारी है। हामिद का चिमटा दादी के लिए जो लाना होता है वो किस कहानी का शीर्षक है, मतलब कहानी का शीर्षक हमने पूछा था, प्रेमचंद की लिखी कहानी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ईदगाह। और हमें लगता है बचपन में सभी ने ये कहानी पढ़ी होगी और पढ़ने की शुरुआत ईदगाह से होती है और बहुत सारे पाठ्यक्रम में भी शामिल थी ये तो कहानी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईदगाह की कहानी हमारी हिंदी की किताब में होती थी। हामिद की माँ हाथ रोटी सेकते हाथ जल जाता था, 3 रुपए का चिमटा खरीद लाए थे। दरअसल हामिद की माँ नहीं, हामिद की दादी थी। हामिद के माता पिता बचपन में ही नहीं रहे और इस वजह से दादी ने पाला था और बहुत गरीबी में पाला था। और दादी का भी उसमें बहुत, दादी की संवेदना है कि वो हामिद को ईद के दिन क्या तोहफा दें, क्या लाएं और हामिद के लिए ईद किस तरह से खुशगवार हो। यहाँ दादी सोच रही होती है और हामिद अपनी दादी के लिए चिंतित होता है कि दादी का हाथ चलता। बहरहाल एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कोई साधारण भावना नहीं बल्कि आत्म अन्वेषण की एक गंभीर और दीर्घ यात्रा है। प्रेम अपने भीतर अनेक विरोधाभासों को समेटे रहता है जो अपने स्वरूप को प्रकट भी करते हैं। प्रेम अपार आनंद का स्रोत होने के साथ ही विरह और पीड़ा का अनुभव भी कराता है। दरअसल प्रेम में फूल होते हैं तो कांटे भी होते हैं और फूल के साथ कांटों का साथ होना बहुत स्वाभाविक है। और जो सबसे अच्छा सुंदर फूल लगता है उसमें तो कांटे ही रहते हैं, गुलाब का फूल। ऐसे और कौन से फूल हैं जिनमें कांटे होते हैं, बता सकते हैं आप? फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना।
1: फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली।
0: फिल्म का नाम जरा बताइए।
1: मिले न फूल तो कांटों से।

अनोखी रात फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, कैफी आजमी के बोल रोशन का संगीत था और सभी श्रोताओं ने बगैर पूछे ही बताया है परीक्षित साहनी, जाहिदा सही बताया है, फिल्म थी अनोखी रात। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं प्रयागराज की रहने वाली हूं, यहां कुंभ मेला लगता है तो बड़ा आनंद आता है। बहुत सारे श्रोताओं ने प्रयागराज कुंभ मेले की बात लिखी है और एक श्रोता ने लिखा है कि सपने ही सपने कब हुए अपने, आंख खुली और टूट गए, नींद के सपने हकीकत में बहुत अंतर होता है, कई बार सपने बुनने में आनंद भी आता है और सपने जब दो लोग मिलकर साथ साथ पूरे करते हैं तो उस सपने की बात ही अलग होती है। जरा बताइए कौन है वो दो लोग जो मिलकर सपने बुन रहे हैं, फिल्म लव स्टोरी, हीरो हीरोइन का नाम आपको बूझना है। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें, हीरो हीरोइन का नाम बताइए जल्द।

फूलों के शहर में घर अपना भी सपने वाला ये गाना था। बहुत सारे सपने अधूरे वाले गाने भी हैं और हमारी भारत में सपना शब्द था। लव स्टोरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर, अमित कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल। और पूछा था हमने हीरो हीरोइन का नाम, सभी ने फौरन बताया कुमार गौरव, विजेता पंडित। एक श्रोता ने ये भी लिख डाला है कि प्रमुख कांटे वाले फूलों के नाम भी बता दिए, गुलाब है, बोगनविलिया है और बहुत सारे नाम इन्होंने लिख भेजे हैं। और लाल, गुलाबी, पीले रंग के छोटे आकर्षक फूल खिलते हैं और ऐसे कैक्टस फ्लावर्स, पौधे की पूरी सतह पर कांटे होते हैं। लेकिन अब वक्त नहीं कि हम पूरी टिप्पणी इनकी पढ़ें। हम शुक्रिया अदा करते हैं इस जानकारी के लिए। अब इतना बता दें, आज का सुरीला सफर आपने पूरा किया।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे धरती फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की और इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश भेजी थी आप सभी श्रोताओं ने। शालर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मेहरुद्दीन कैशरद्दीन और नजमुद्दीन, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, श्रीमती प्रमिला ज्योति श्याम कुंवर और इनके अन्य साथी। इसी गाने की फरमाइश आई थी वरुड़ जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे की ओर से।

आपकी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की और फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। मानेवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता मनोहर, लक्ष्मण देवुलकर और इनके परिजन। और इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार की ओर से, और रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिवंगत गद्रे, राजेश शुभांगी और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई थी जबलपुर बरगी नगर से। चलिए अब सुने अगला गीत ये।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये था सूरज फिल्म का गाना। रचना थी हसरत जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश थी आप सभी की कमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार और इनके साथी। और इसी गाने की फरमाइश थी नेकी राम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल, धनराज बांसीवाल की। श्री गंगानगर से धमणी मानोरा से पेंटर तुलसी राम डेरे, मायावती डेरे, पेंटर संदेश डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे की फरमाइश थी। सुनिए अगला गाना, ये अपनी ही फरमाइश पर।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और फिल्म थी गीत। गीत को सुनना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने। कर्नाटक चिन्ना तिरुपति से प्रकाश श्यामला अश्विनी रमेश आनंद अन्वित और इनके परिजन, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से प्रमिला श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार, अशोक श्याम कुमार, दीपक और

महबूबा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन, पसंदकर्ता हमारे ये श्रोता थे छत्तीसगढ़ बोर तालाब से शत्रुघ्न लाल यादव, गौतम यादव, संगीता यादव और सचित यादव, अलीवाड़ा तामिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवी राम इनावती, दामिनी इनावती।

तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने। गांव कोटगा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तूफान पटेल, टीना दांगी और लक्षित डांगी ने। इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, सुनील प्रसाद और इनके परिवार की ओर से। चांदनी चौक गवई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविन्द्र रौनक सेन और इनके साथियों की ओर से आई थी फरमाइश। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक वो आएगी। इसके लेखक हैं तस्वीर आबिदी, निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। तो आइए सुनते हैं नाटक वो आएगी।

0: बच्चे कुछ कहना चाह रही है।
1: इतनी जोर से कॉफी हाउस में नहीं हंसा जाता।
0: वही नहीं हंसा जाता।
2: इस कॉफी हाउस के गोशे की बहस पर ये तीन अजनबी, तीन दिमाग, तीन अलग अलग विचार रखने वाले।

वाले तीन इंसान एक साथ इस तरह घुल मिल कर बातें कर रहे हैं, क्या ये एक इत्तेफाक है या ये तीनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं? जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है, जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था, जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: आज भाई भाई का दुश्मन क्यों? क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी।
2: ये कौन है?
1: वो आएगी।
2: आखिर ऐसे क्यों घूमता है?
1: वो आएगी।
3: काफी साहब,
4: मेरे दोस्त, तुम किस सोच में पड़ गए? क्या मनोविज्ञान के किसी चैप्टर में खो गए?
5: कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आएगी। महानगरीय शोर शराबे के सीने को छीटती हुई ये आवाज तुमने सुनी?
4: हाँ, मैंने भी सुनी।
5: आखिर वो किसको बुलाता है?
4: देखो दोस्त, मैं तुम्हारी तरह फलसफी तो हूँ नहीं।
6: हाँ भाई, एक सियासी आदमी फलसफी हो भी कैसे सकता है?
4: मेरा नजरिया है कि वो यकीन की उस रोशनी की तरफ इशारा कर रहा है जिसकी हर किरण प्रेम का पैगाम है। वो सत्य है जिसकी गगनचुंबी इमारतें ऋषियों, मुनियों और महात्माओं के उपदेशों के आधार पर खड़ी है।
7: हो सकता है मेरे दोस्त तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे विचार सही हो, लेकिन सच पूछो तो ये एक विज्ञान का दौर है। अब हम जमीन की बातें कम और आकाश की ज्यादा कर रहे हैं। जरा सोचो, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने ऐसे ऐसे रहस्यों को उद्घाटित किया है
4: जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
8: हाँ, ये तो है।
0: आइए मैं आपको उस जगह ले चलूं जहां इस कहानी ने जन्म लिया।

0: बस करो सुधीर।
1: सुहेल डियर, काफी अरसे के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं, और वो भी एक अजीब बात के सिलसिले में। खैर छोड़ो, फिर किसी वक्त बताऊंगा। तुम अपनी सुनाओ, शादी वादी भी की? अरे हाँ, ठीक याद आया, तरन्नुम और तुम्हारे डैडी।
0: तुमने बहुत से सवालत कर डाले।
2: कोई डॉक्टर।

0: गॉड, बेचारा, देखो कितनी बुरी तरह जख्मी हुआ है। एक इंसान के खून की
1: कहानी इसी सड़क पर खत्म हो जाती है जहां से
0: कहानी। ओह, मगर तुम इधर कहां जा रहे हो? क्या घर?
1: हाँ।
0: क्यों?
1: कुछ नहीं।
0: ओह, तो तुम काफी सीरियस हो रहे हो, इसकी वजह
1: है मेरे दोस्त।
0: तो क्या तुम मुझको नहीं बताओगे?
1: जरूर बताऊंगा। सो गया मेरे बचपन का दोस्त, बिल्कुल नहीं बदला। और मैं कितना बदल गया हूं। उफ, कितना थक गया हूं मैं। जीने की तमन्ना नहीं, अभी तो मुझे फौजिया की निशानी, मेरी अपनी बच्ची फौजी की परवरिश करना है। कितनी शरीर है। कौन? ओह, कुछ नहीं, मेरा वहम। आज मुझे फौजिया की याद फिर सता रही है। फौजिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारी और फरुख की मोहब्बत कितनी सच्ची थी। कौन? कुछ भी तो नहीं। आज कितना डर लग रहा है मुझे, अंधेरा भी तो छाया है। मेरी पूरी जिंदगी ही तारीख हो चुकी है। मैं पापी जो हूं, आज मेरा समीर खुद

0: शायद जिंदगी भर अब मैं इन गुनाहों की आग में सुलगता रहूं। फौजिया, मेरी फौजिया, मुझे माफ कर दे। और फर्रुख, हो सके तो तू भी इस गुनहगार को बख्श दे। फौजिया, फौजिया, माफ कर दे मेरी फौजिया, वो पागल है। तू आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी।
1: सुहेल, सुहेल, होश में आओ, ये क्या?
0: मुझे माफ कर दे फौजिया, तुझे अपनी निशानी की कसम।
1: होश में आओ सुहेल, क्या बात है? बोलो बोलो, कौन फौजिया, कैसी निशानी?
0: माफ करना सुधीर, मुझे डर लग रहा है।
1: क्या बात है, क्यों डर रहे हो? फौजिया कौन है?
0: कुछ नहीं सुधीर, बस डर। बस
1: नहीं, नहीं नहीं, छुपा नहीं सकते। बताओ क्या बात है, तुम शाम से ही उदास हो। तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, शायद मैं तुम्हारे।
0: शुक्रिया सुधीर, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, हमदर्द हो। मैं तुम्हें बताऊंगा, सब कुछ बताकर अपना गम हल्का करूंगा।
1: शायद उस पागल के एक्सीडेंट ने तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है, तुम उसी वक्त से उदास।
0: हाँ सुधीर, वो पागल, उसकी आवाज एक अरसे से मेरा पीछा कर रही है।
1: मैं समझा नहीं, वो पागल, आवाज?
0: हाँ, हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
1: पहेली ना बुझाओ सुहेल, तुम्हारी उदासी, फौजिया, निशानी, आवाज।
0: तुम्हारा हर सवाल एक ही कहानी की कड़ियां है मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी की कहानी।
1: ओह, ये तुम हो जिसकी जिंदगी कहानियों से दूर थी।
0: हाँ, कभी थी और अब एक दर्दनाक कहानी, मगर दूसरों से कहता रहा कि मेरी जिंदगी अब भी कहानियों से दूर है,
1: और खुद को धोखा देता रहा मगर क्यों?
0: ताकि तुम्हारा समाज, तुम खुद मुझसे नफरत
1: मगर
0: इसलिए सब कुछ छुपाता रहा, लेकिन आज।
2: सुहेल साहब, आप बहुत आगे बढ़ आए हैं। कई बार चाहा कि आपको रोकूं और साफ साफ कह दूं, धोखे में ना रखो। हाँ सुहेल साहब, मुझे नहीं मालूम था कि आप एक छोटी सी मुलाकात को इतनी अहमियत देंगे, वरना मैं आगे बढ़ने से आपको रोक देती। खुदा के लिए, खुदा के लिए, आप जहाँ हैं वहीं से लौट जाइए प्लीज।
0: मगर क्यों?
2: इसलिए कि आप मेरे लिए सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, और फर्रुख

0: तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हारी जान।
1: सोहेल साहब, आप?
0: हाँ मैं, और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं।
1: तो आप मुझे अपने रास्ते से हटाकर फौजिया को अपना लेंगे? क्यों?
0: हाँ,
1: फिर भी आप फौजिया को अपना ना सकेंगे
0: तो तुम नहीं मानोगे। तो लो,
2: भाई
0: तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं तेरी जान ले लूंगा, तेरी जान ले लूंगा।
3: एक अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, कुछ भी हो। फौजी,
4: आप मुझे फौजी कहकर ना पुकारा कीजिए।
3: मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि फरुख भी तुम्हें इसी नाम से पुकारता था।
4: मैं फरुख को भूल चुकी हूँ और अब आपकी बीवी हूँ।
3: फौजी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी करके तुम्हारी और फरुख दोनों की जिंदगियों में घुल लगा दिया है। फौजिया, आंखें खोलो फौजिया।
4: अरे, ये तो बेहोश हो गई।
3: फौजिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब से तुमने इस नन्ही सी जान को जन्म दिया, तुम्हारी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। मैंने दो जिंदगियों को तबाह किया। मैं कभी चैन नहीं पा सकता। नीलम, मेरी फौजिया को क्या हो गया है?
4: बस करो सुहैल, जो तुमने किया, हे भगवान इसे बचा ले। मेरी अजीज सहेली, मेरी बहन, होश में आ। देख देख, मैं हूँ नीलम। लो ये दवा पी लो।
5: कौन? नीलम?
4: हाँ फौजिया, मैं नीलम। और ये देखो तुम्हारी नन्ही फौजी, इसे गले लगा लो।
5: मेरे बच्चे, वो सुहेल कहाँ है?
3: मैं तुम्हारे पास हूँ फौजिया। मैं
5: मेरा आखिरी सलाम
3: फौजी।
5: हो सके तो मुझे माफ कर दो।
3: नहीं फौजिया,
5: मैं तुम सबसे दूर, बहुत दूर जा रही
3: हूँ।
5: नीलम, नीलम, मेरी बच्ची, मेरी फौजी, अपनी अमानत, मैं तुम्हें सौंप रही हूँ।
3: फौजिया, I'm sorry.

0: ये कहानी आज भी तीन सीनों में दफन है। फौजिया आज इस दुनिया में नहीं, फर्रुख पागल है और नीलम एक देवी जो आज भी वचन निभा रही है और मेरी फौजी की परवरिश कर रही है।
1: फर्रुख का क्या हुआ सुहेल?
0: फर्रुख सुधीर, जब फौजिया का जनाजा घर से जा रहा था तो मैंने देखा।
1: क्या?
0: मैंने देखा सुधीर, जनाजे के सबसे पीछे वो फर्रुख था।
1: फर्रुख? वो हाँ, पागल?
0: हाँ सुधीर, वो चुपचाप जनाजे के पीछे चला रहा था। वो कब्रिस्तान तक गया, लगता था वो पागल नहीं है, वो रो भी नहीं रहा था, बस उसकी हालत बता रही थी कि वो पागल है। लेकिन जब फौजिया की लाश कब्र में उतारी गई और मिट्टी डाली जाने लगी तो वो कुछ कहता हुआ भाग रहा था।
2: अभी
0: औसी मेरी बच्ची।
2: अभी आप रो क्यों रहे हैं?

0: चुप हो जाइए ना, हम आपको बहुत चाहते हैं।
1: मेरी प्यारी बच्ची।
0: अब तो नहीं रोइएगा अभी?
1: नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। सुधीर, यही है मेरी बेटी फौजी। तुम्हारी आंटी कहाँ है बेटी?
2: मैं यहाँ हूँ सुहेल भाई।
1: अरे नीलम, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो
3: आप? आप नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी?
2: जी, मैं नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी। मिस्टर सुधीर, आप यहाँ कैसे?
3: जी जी वो
1: खूब। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो?
2: नहीं सुहेल भाई, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले, सिर्फ तस्वीरों की मुलाकात।
3: वो इत्तफाक से। नीलम जी, मैं सुहेल का दोस्त हूँ।
1: और अब ये तस्वीरें हकीकत के रूप में एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। अब क्या इरादे हैं?
2: सुहेल भाई, मैं अपने इरादों पर अटल हूँ।
3: इरादों?
2: जी, फौजी जो मेरी अजीज सहेली की निशानी है, अब मेरी जिंदगी, इसकी परवरिश, मेरे सपने और इरादे।
3: आपसे इस अचानक मुलाकात से पहले मैं फौजी को सुहेल से मांग चुका हूँ, मगर सुहेल ने कहा था कि फौजी पर मुझसे ज्यादा नीलम का हक है, यानी आपका।
2: हाँ सुधीर साहब, फौजी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जब उसे मैंने अपनी बहन फौजिया की मौत के बाद अपनी गोद में लिया, तो मैं उसकी माँ तो नहीं।
1: माँ की ममता से इसकी झोली भरती।
3: फौजी के लिए अगर आज मैं आपके सामने अपना हाथ।
2: फौजी मेरी जिंदगी है।
3: नीलम जी,
2: ये नामुमकिन है मिस्टर सुधीर।
3: नीलम जी, फौजी मेरी भी है।
2: जी नहीं, सिर्फ मेरी।
0: अरे अरे, अंकल और आंटी तो लड़ने लगे अब्बी।
1: हाँ बेटी, मेरी समझ में।
0: आप रोइए नहीं अब्बी, मैं समझाती हूँ। आंटी आप और अंकल आप दोनों इधर खड़े हो जाइए।
3: खड़े हो जाइए?
0: बोलिए नहीं, बस खड़े हो जाइए।
2: नहीं फौजी, ये तुम
0: एक साथ खड़े हो जाइए, नहीं तो मैं रोने लगूंगी।
3: अच्छा अच्छा, लो हम खड़े हो गए।
0: हाँ बस, अब मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। ऐसे अभी, अब मैं कैसी लग रही हूँ?
1: बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी।
0: तो अभी हम लोग ऐसे ही रहेंगे, अब आप खुश?
1: फौजी
2: मेरी बच्ची।

0: प्यार मोहब्बत और कर्तव्यों के इन्हीं पाकीज़ा जज्बात की नींव पर ही मानवता की इमारतें खड़ी हैं।
1: जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है, जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था, जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी।
0: आओ लौट चले फिर उसी जगह।

अभी आप सुन रहे थे तस्वीर आबिदी का लिखा ये नाटक वो आएगी। इसका निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।